0: अरे ए बेटी, पहले पानी वानी पी अबू।
1: ना माई, पहले राखी बनाई। हाँ माई, पहले राखी बनाई।
0: तो हम लोग के अभी लड़कपन गए ना, अब खुशी ससुरैती भैली।
2: का माई, बना दे लू गैर।
1: अरे छोड़ो ना दीदी, तू तो माई के जानते बाड़ू, आओ पहले राखी बना।

0: आएंगे बहनी, आज रक्षा बंधन है, रुसल का लीगे रखिया नहीं बांधनी की
1: बांध न आए, लेकिन पहले वो हमार बात माने पड़तो
0: की बोल में
1: हाथ चल ले हो।

माई ए माई भैया अभी लेना आई ले। अरे बेटी भैया तार डॉक्टरी में लोग के सेवा करत हुई, बस जल्दी ही आ जाई, जाके तो थाली सजावा।

0: चाँदी का आकर्षक डिजाइन का गरगहना किन्ने सोच में हुनुहुन्छ? अब तपाईको रोजाई को पहिलो गंतव्य बने लुम्बिनी खाती सुन चाँदी पसल।
1: पुराना सुन चाँदी साट्न, नयाँ गरगहना बनाउन तथा आफूले चाहेको डिजाइन अनुसार अर्डर गर्न अवश्य सम्झनुहोस्।
2: लुम्बिनी खाती सुन चाँदी पसल, भारंगा चार जितपुर कपिल वस्तु।
1: प्रोपराइटर दिल बहादुर खाती, सम्पर्क नम्बर 9857135569। अर्जुन खाती, सम्पर्क नम्बर 9857778400।

0: बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्जमा सुन्न नभुल्नु होला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।

0: प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन
1: शान्ति र विकासको आधार सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्ज।